0: ए रणवीर सिंह, बहुत नाज है ना हिंदुस्तान को तुम्हारी सिख रेजिमेंट पर। अरे तुमने कड़े पहने तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी। देख देख तेरे सीने पर पांव रखकर कश्मीर की सरजमी पर हम हमारा झंडा लहराएंगे।
1: ओ खुशिया, तू नहीं जानता सिक्का लो केस कच कड़ा कृपान संगा सिखों का निशान। ढूंढते रह जाओगे नक्शे में पाकिस्तान।

0: नहीं दोस्तों, अगला गीत सुनते हैं जी, मलकी कीमा। क्या बात है, बहुत फेमस सॉन्ग सी उस टाइम दे विच, बहुत ज्यादा इनू लोगों ने सुनिया। और आप मलकी कीमा थोड़े नाल पेश कर दें जी, मोहम्मद सदीक साहब ते रंजीत गोयल।
1: कीमा रांझे दा भतीजा गढ़ मुगलाने दे सरदार राय मुबारक दी लड़की मलकी दे नाल व्याया गया। निक्किया निक्किया दा व्याह हो गया, जवानी आई ता दोहां दे हुसन जवानी दी चर्चा गली गली महल्ले महल्ले घर घर होण लगी। मलकी दियां सहेलियां मलकी नूं आखदियां, अड़िए मलकी ए तेरा कीमा असीं कोरियां ते बैठा वेख्या सी, बड़ा सोहणा सी, आहा हुण तां गभरू होके होर भी सोहणा लगदा होणा। उधर बचोलन कीमे नूं आख्या करे, अड़िया कीमिया तेरी मलकी हजारां नहीं बल्कि लखां चेक है, वेंदियां सार इंसान तक ही परिंदे वी घट आ के निकले। एक दूजे दे हुसन दी तारीफ सुन दे, एक दूजे उत्ते आशक हो गए, सबबी मेले हुंदे ने। एक वारी कीमा गढ़ मुगलाने नूं जा रहा, रस्ते दे विच एक खूह दे उत्ते कुछ कुड़ियां पानी भरदियां ने, उहनां विच मलकी भी सी। मलकी दा हुसन वेख के कीमा खूह ते गया पानी मंगदा उहनां कुड़ियां तों, तां उहनां कुड़ियां दी सरदार ओह हुसन दी मलका मलकी नूं तोड़ के जवाब दिंदी है। जरा गौर नाल सुनना की जवाब दिंदी है।

0: ऑफ कोर्स प्रवास रेडियो रेडियो स्टेशन एक्सपोज योर सेल्फ ऑन यू सी दिस वंडरफुल वर्ल्ड विद योर ओन वॉचिंग आईज एंड वी आर ऑन फॉर ऑल अवे।
1: बिल्कुल दोस्तों, असी तो सिर्फ फोन कॉल अवे ही हाँ।

0: घोड़ा चतुरा एक पैर है ना, या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना।
1: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत